0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होन दिया कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पग दोस्तों साडा ना कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा आप विच ते मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

मुलार में मेले में अकेले फिरी बाजार सर में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना मैं क्या यमला पगला दीवाना

सो दोस्तो मैं माफी चाहना हाँ कि साड़ी गलबात बबी जी उन्हां नाल नहीं हो सकी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम करके मेरे वाल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं कोई आई उन्हां दी कॉल जिहड़ी सी उह कुछ सैकंड विच ही बंद हो जांदी सी ते उधर कोई टेक्निकल भाई चलो एनी हाउ हो सकदा मैं अपनी गलबात चालू रखदा ना गाना भी कोई ना कोई एंटरटेनमेंट भी करता रहा अपना टाइम मैं पूरा करना मैं दोस्तों गलबात कर रहा थी भारतीयों के पखंड पुणे ते एक्टर पुणे ते अपने समाज का जिहड़ा दुखांत है जिहड़ा जिहड़ा रूप सानू पसंद नहीं उहदे उत्ते मेरी गलबात चल रही थी ते उहनू ही मैं थोड़ा जिहा अगे वधाउणा जिहड़े मेरे 15-20 मिनट रह गए ने मैं अर्ज कर लिया सी कि साडा ना जिहड़ा मतलब कि पुलिस वालियां तो गल मेरे खत्म कीती सी कि देखो पुलिस साडी जिहड़ी पुलिस है असी कोई क्राइम करदे आं जां भारतीय नागरिक कोई भी कोई क्राइम करदा है ते उहदी सजा उहनू मिलनी चाहीदी है जुर्माना उहनू होना चाहीदा है पर साडे जिहड़े अधिकारी ने पुलिस अधिकारी वह बहुत गंदियां गालां मावां भैणां दियां कढ़दे ने बाजार दे विच लागों दी लेडीज भी नंघ रहियां हुंदियां ने बेशर्मी दे तरीके दे नाल इह पुलिस दा किहड़ा स्टाइल है डिसिपलिन दा किहड़ा तरीका है इह ते बदतमीजी दी इंतहा है कि असीं जिहदे कोल कोई कानून भंग होया उह भैण या मां दा की कसूर है उहदे विच जिहनूं इह गाला कढ रिहा ते इहदे मोढे ते सार लगे ने इहनूं शर्म आउणी चाहीदी है कढणी क्यों दिया गाला उहदे नाल सिद्धी गलबात जुर्माना करो जिहड़ा उहदा हुंदा उह कानूनी कारवाई करो जिहड़ी उहदे नाल हो रही है इह शर्म वाली गल है नंबर दो दे उत्ते जिस तरह मैं हुण गल इस तरह कि साडा जिहड़ा सिस्टम है ना उह है ही इदां दा साहित दे केंद्र गवारां दे हत्थ विच राजनीति बहुत गंदियां गालां मावां भैणां दियां कढ़दे ने बाजार दे विच लागों दी लेडीज भी नंघ रहियां हुंदियां ने बेशर्मी दे तरीके दे नाल इह पुलिस दा किहड़ा स्टाइल है डिसिपलिन दा किहड़ा तरीका है इह ते बदतमीजी दी इंतहा है कि असीं जिहदे कोल कोई कानून भंग होया उह भैण या मां दा की कसूर है उहदे विच जिहनूं इह गाला कढ रिहा ते इहदे मोढे ते सार लगे ने इहनूं शर्म आउणी चाहीदी है कढणी क्यों दिया गाला उहदे नाल सिद्धी गलबात जुर्माना करो जिहड़ा उहदा हुंदा उह कानूनी कारवाई करो जिहड़ी उहदे नाल हो रही है इह शर्म वाली गल है नंबर दो दे उत्ते जिस तरह मैं हुण गल इस तरह कि साडा जिहड़ा सिस्टम है ना उह है ही इदां दा साहित दे केंद्र गवारां दे हत्थ विच राजनीति बदकारां दे हत्थ विच जख्म सीणे

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उहने अपने किसे साथी दी सरगर्मी दा कोई किसे किस्म दा वी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुज्जी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोला नूं जबर नाल दबाउणा, ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वो बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देन। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तों बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तों प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना की, ना ही मौत तों डरदे सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तों ना मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलों ही नेड़े। सच्चे अर्थां विच लोक मानसिक तसीहां अगे

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 855

Escroto. ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां

0: ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर लिवर बिल्कुल बिल्कुल
1: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज न्यूयॉर्क तो न्यू जर्सी तो यूएसए तो मैं हां तुहाडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खख तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी सो अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत हो रही है जी तुहाडे नाल रल मिल के प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हैं ओ बड़ा सत्कार जो सारे वीर भैन भरा इस प्रोग्रामा विच जिन्ना भी साथ दिंदे ने सुनदे ने प्रोग्रामा नूं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद दोस्तो तुसी फोन कर सकदे हो जदों भी तुहाडा दिल करे और प्रोग्राम दे पहले अद्धे घंटे विच असी गीत लाउने उहदे विच तुहाडी कॉल भी आ सकदी कोई मसला नहीं उस तों बाद फिर प्रोग्राम चालू हो जांदा जी खबरां दा ते फिर डाक्टर साहब दा फिर आपां कॉल उहदे विच नहीं लै सकदे सो जे तुहाडा दिल करे तो तुसी अपने कॉल जिहड़ी है ऐ हुण तो लैके अद्धे घंटे तक विच विच तुसी कर सकदे हो सो लो गीतां दे नाल शुरुआत करदे हां जी ते मेरा फोन नंबर तुसी जे कॉल करनी होवे ते अमेरिका दा नंबर है जी 732-874-3259 दे उपर तुसी कॉल कर सकदे हो दूसरा नंबर है जी 8563970301 सो ये अमेरिका के नंबर दे उपर तुसी कॉल कर सकदे हो बड़ा शुक्रिया धन्नवाद मेहरबानी लोग ही सुनदे हैं जी अपना एक

मेले में अकेले फिरी बाजार सर में, कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना, गमला पगला दीवाना।

सो दोस्त। मैं गलबात कर रहा सी कि उस वक्त जेड़े लोकां ने दावा किया सी कि धरती चपटी नहीं गोल है, उस वक्त दे जमाने ने उन्हां नूं सजाए मौत दित्ती। ते भारत दे विज्ञानियां दी गल सुन लो, असी तकनीक ते पश्चिम दी है ना नकल मार के जे कुछ बना भी लईए, धार्मिकता दे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं गल कर रहा, जदों मंगल यान जदों भारतीय विज्ञानियां ने बनाया ते आपे बना लिया, फिर नारियल भन के धूफा जगा के उदी पूजा करन लै पे, हद हो गई। इहदे च की तुसीं जिहड़ी मशीनरी बनाई है कोई देवता बनाता है, तुहानूं कोई रब बनाता जिहदी पूजा करन लै हो, हाथीं तां तुसीं इह सारा कुछ बनाया है। भावें टेकनीक किसी होर कंट्री दी सी, कोई गल नहीं, पर तुसीं चलो बनाया है, ते इहदे च पूजण वाली इहदे नक कसाउण वाली किहड़ी गल है। रफेल जहाज जदों लै गए, राजनाथ सिंह हुणां ने उहदे टायरां थले नींबू रखे, नारियल तोड़े, हांजी उहदी आरती उतारी, उह जहाजां दी पूजा कीती। जिहड़े इंजीनियरां ने इह जहाज बनाए होणगे उह तुहाडे बारे की सोच रहे होणगे कि तुहानूं कुछ होर भी याद है, चेते आउंदा कोई कोई पूजण तों सवा, चूहियां तक पूजण तों सवा, हर उह चीज जिहदी समझ ना आए उहदे अगे मत्था ही टेकी चले जाणा, नदी अगे मत्था टेक देना, दरख्त तले अगे मत्था टेक देना, फलानी चीज नूं इट्टां दा ढेर जिथे लगा होएगा उथे जा मत्था टेक देना, ए अंधविश्वास है, धार्मिकता नहीं। वो जहाजां दी पूजा कीती गई जी, निंबू नुंबू धर के, ए जहाज की गल है, तुहाडे पूजा करन नाल पेट्रोल घट खाणगे जां तुसीं इहदे ते कोई फायर करोगे ते बंदे ज्यादा मारनगे, जां इन्हां नूं कोई गोली टच नहीं करेगी दुश्मन दी, की किहड़े पॉइंट ऑफ व्यू दे उत्तों तुसीं मतलब कि उन्हां दी इह पूजा कर रहे हैगे सी। मैं अपनी धार्मिक मैंटैलिटी की गल कर रहा भारतीयां दी, जहाजां दे नहीं कोई इतराज, मैं सोच की गल कर रहा भाई, असी सोचते किदां। प्यारे भारतीयो, पिछले 2000 साल तो तुहानूं धर्म का कोई फायदा होया? हां जी, हो सकता धर्म फायदेमंद ही होवे, पर तुहानूं फायदा नहीं कोई होया, नुकसान ही होया इहदा। सारी दुनिया का मार्टिन लूथर वर्गे जिहड़े हन, पूरा जोर ला के उन्होंने प्रचार किया कि धर्म एक मकड़ जाल है, ते अंधविश्वास उहदे तों भी वड्डा मकड़ जाल है। आओ, देश का विकास अरदासां करके नहीं, पखंड करके नहीं, दीवे जगा जगा धूफा जगा जगा देश का विकास नहीं होना। धूफ का, आरतियां का, अरदासां का विकास नाल कोई संबंध नहीं। तुसीं एवें अपने मन की शांति वास्ते सोच है तुहाडी कि यह अरदासां नाल एवं हो जाएगा, नहीं, हत्थी करके होना है, कोशिश करके होना है। आओ, देश का विकास अरदासां करके नहीं, खुद मेहनत करके करिए, रब कोलों मंगण दी थां चीजां खुद पैदा करिए। अहे बाबा टल पक्की पकाई कल, मंगण दी थां आओ खुद पैदा करिए, स्वर्ग नरक नूं मारो गोली, अपना मुल्क ही स्वर्ग बनाइए। दोस्तो, ए बिल्कुल सच है, असी अपना मुल्क स्वर्ग बनाउणा है के नरक बनाउणा है, ए देश दे नागरिकां ते सरकारां दे हाथ विच हुंदा है।
ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਐਂਡ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੌਆ ਕੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਏ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕਦੀ?

0: या घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पैर है ना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 858-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उत्ते।

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो पीआरओ रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑल

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खट पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह ठक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उत्ते
1: हटा दो जरा मुखड़ा।

0: घोड़ा चतुरा
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जीआं दीआं कालां लांगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां,

मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआ खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा, आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला।

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपकते ना कभी चांद तारा।

0: आजा पिया तोहे प्यार दू, ओ गोरी भैया तोहे प्यार दू।
1: वाह वाह राधना जी, आज मदर डेयरी है तुहानू पता होना
0: जी।
1: हां जी,
0: हां जी बिल्कुल।
1: तुसी दुनिया दी सोहणियां मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे?
0: जी बिल्कुल। एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी, हां जी
0: हां जी। मंजली दा मतलब की बिचकारली।
1: अच्छा,
0: यूपी च मंजली या मंजला भरा बिचकारले नूं कहंदे।
1: मेहरबानी, मेरे वास्ते नवा लफ्ज आए, थैंक यू।
0: मंजली दीदी।
1: अच्छा, मंजली दीदी, ठीक है।
0: हां जी, सचिन छोटा जिहा सीगा ते ओदे उत्ते एक गाना फिल्माया सीगा जो मैं हुण आप जी नूं सुणाउण लगी मावां उत्ते।
1: अच्छा, सुणाओ जी।
0: ते ए गीत वैसे तो सारे मावां लई इको गीत गांदे ने, बड़ा हिट है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
1: काफी।
0: ए भी गीत आ, ए भी बड़ा हिट होया सी।
1: अच्छा,
0: ते जेड़ा मैं आप जी ने सुनान लगी ओ किते किते आकाशवाणी ते बजदा सी।
1: अच्छा,
0: और क्योंकि मेरा शौक रहा ते मेनू तो फिर बचपन दे सारे गीत
1: याद ने जी। मैं बिल्कुल
0: जी, ए भी बड़ा गॉड गिफ्ट है जी, इन्ने गीत याद रखने। मेरे ख्याल कि 200-250 गीत मेनू मुंह जवानी बचपन दी याद ने हुण तक।
1: टेस्ट है, हॉबी है तुहाडी
0: जी। हां जी बिल्कुल। ते दूसरी गल है कि मेरी मां दी देन है। मेरी मां ने कहा गुड्डी तेनू ए गीत याद है, तू ए गीत सुना।
1: अच्छा, तुहाडा नाम तुहाडा गुड्डी हुंदा सी?
0: हां जी, हुंदा नहीं सी, हुण वी आ।
1: अच्छा, हुण वी तुहानू गुड्डी
0: मिलदे? तुसी मैनू गुड्डी बुला सकदे हो? आजा हुण।
1: चलो जी, मैं अगली बार तो गुड्डी तुहानू गुड्डी दे नाम नाल मुखातिब करांगा। बहुत सोहना नाम है गुड्डी। आम पिंडां विच हुंदा है कुड़ियां दे नाम
0: जी। ते मेरे नानी जी ते मेरे फादर मेनू गुड्डो कहंदे सी। चार नाल
1: गुड्डो गुड्डी। हां जी हां जी
0: हां जी। ते ओ गीत मैं आप जी ने दो लाइनां
1: सुनानी आ। नानी ते नाना तुहानू प्यार नाल गुड्डो कहंदे सी?
0: हां जी।
1: ते जदों गुस्से च हुंदे सी उदों की कहंदे हुंदे सी?
0: उदों कहंदे सी नी गुड्डो सुनन दई आ, उरे आई। तैनू सुनांदा नी? एक बारी मैं नानी ने आवाज मारी, मेरे नाना जी हुक्का पींदे सी।
1: अच्छा,
0: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ?
0: ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁੜਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੁੜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
1: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ
1: ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
0: ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁੱਡੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਛਕ ਦਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਰੇਬਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
1: ਹਾਂ,
0: ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

0: घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: ঘোড়া চতুরা এক পেরায় না, যা ঘোড়া বললাম ইয়া চতুর বললাম।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

Hello. Hello. दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम लेके ताडे नाल हाजिर हो गए जी न्यूयॉर्क स्टूडियो तो न्यूजर्सी तो मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक प्रोग्राम अज दी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नु जी अज आपां कुछ गीत सुरेंद्र शिंदा भाजी होणां दे सुणांगे

नमस्ते अदाब ती सुन रहे हो दिल की आवाज प्रवास रेडियो मैं हाँ ता दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाक नमस्ते अदाब दोस्तों तुसी

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़ों च वाधा करदा,